0: आवाज दी खूबसूरत प्रवास हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ते आप सब दा स्वागत है। रेडियो ते अपने गीतां दी फरमाइश ले तुसी साडे नाल ईमेल अते टेलीग्राम राही जुड़ सकते हो। टेलीग्राम मैसेज करो इस नंबर ते 9197080449। तुसी सानू ईमेल भी कर सकते हो request@harmanradio.com।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा टॉप गीत।

0: अभी
1: जी जी कीमत में कोई दुनिया तेरा तेरे को सुकून चना
0: तभी चलो काम से सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।

0: हम आशिक हैं है हमारा क्या, है हमारा क्या, हम आशिक हैं और आशिक भी ऐसा आशिक होगा ना तुम्हारा। ओ
1: विचार चाचा, जिथे सच दे सार बारे विचार चाचा ना होवे उस थानू अंधकार ही समझना चाहिदा है। सुने विचारां ले जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: अपनी बिजनेस की तरक्की लिए तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस की एड देन लिए जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लिए संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा टॉप गीत।
2: पेकियां दे पिंड भाबी निगाह नूं गा मार लै, पेकियां दे वाले भाबी निगाह नूं गा मार लै।
1: आ भी

इस घंटे विच तुसी सुन रहे हो एक पुराना अते एक नवा हिट गीत। केड़े केड़े देशां विच की वापर रहा है, हर देश विच हो रही भिन्न भिन्न गतिविधियां दी जानकारी मुहैया करवाएगा हरमन रेडियो। हरमन रेडियो विदेशी बसदे पंजाबियां दी रूह नूं पंजाब दी मिट्टी नाल जोड़न दा उपराला कर रहा है हरमन रेडियो। हरमन रेडियो। हरमन रेडियो।

0: रोटी हजम नहीं होंगी। वरतों गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल्स का गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट कैमिकल की वरतों वाली कणक जेडी की सीधी खेतों चो मिल च लाई जाती, आस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डुआ लई स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरों की दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्ट हैं। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन .com.au या फोन करो 0428-895-564।
1: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया से ब्रिस्बेन चो। आज ताया जी वेलकम। ताया आज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे से आउंदी आ, ऐसो किसो मिलू इंडिया आले गद्दे। लो ताया आपा ले आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा, सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे, धार्मिक फोटवा, चादरा, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन भी दूर करती, नाले तेरी ताई कहती सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा, लिखो फिर 2A 130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। अकाल कर लियो ताया जी 0404-000-536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
2: मुआफी चाहुने हां कि अज असी इस घंटे दा खबरां दा बुलेटिन तकनीकी कारणा करके पेश नहीं कर सके।

0: तेरा
1: नहीं बड़ी लाइट बंद करो यार
2: सो गए हो चल मेरा पोटू तेरा माल
3: रोजाना दोपहरे सिमनी समय एक तो दो बजे तक असी सुनांगे खबरां अज दा इतिहास हासरस कमेडी अते टॉप गीत माणो आनंद

0: गया बेड़ा, हाय बह गया बेड़ा, मैं तो पाजू रहे।
1: ओ मुलाजमा, ओ मैं सामो जगे दी बीबी थापी चके इन भजी आउंदी आ।
2: ओ तुसी साहब जी जाओ, मैं आपे वेख लैना जगे दी बीबी नू। ओ हां भी बीबी, कीड़ा बह गया बेड़ा?
0: मैं तो पाजू रहे, आज तेरी क्रिकेट टीम दा है।
2: लो बीबी गल सुन, तू क्रिकेट दी टीम नु इन्ना माड़ा कही जानी है, तेरा जग्गा भी ते क्रिकेट दी टीम च ही आ।
0: आओ हैगा
2: ना गल सुन बीबी, ओ बैटिंग करदा?
0: नहीं करदा।
2: फिर ओ बॉलिंग कराउंदा?
0: मैं कह नहीं कराउंदा।
2: ना होर की करदा?
0: अच्छा जो मीह पै जांदा पिच ते तरपैल पान जांदा।
2: अच्छा एदा मतलब के ए थापी लै के तू क्रिकेट वाले नी तरपैल धोण आई आ?
0: मैं ता पादू राहे, मैं तरपैल धोण नी आई आ, मैं इन्हां दी जान नू रोण आई आ।
2: ना बीबी हुण खिडारियां दी जान नू ना रो, ओ तैनू पता नी 19 सालां बाद इंडिया ने बाहरले मुल्कों सीरीज जीती आ। नाले गल सुन बीबी, ना तू कदे क्रिकेट दा मैच वेख्या?
0: मैं ता पाजू राहे, हले मैं कल ही मैच देखिया।
2: किथे?
0: रेडियो च आउंदा पिया जी।
2: फिर तो तेनू ए भी पता होना कि अपना हरभजन सिंह जाने की भज्जी ओ पूरियां 6 विकटां लै गया।
0: 6 विकटां लै गया? तू मैनू बेवकूफ समझदा है? मैं ता पाजू राहे, ओ विकटां ता हुंदियां सारियां तेना ते भजन 6 किथों लै गया?
2: ओ बीबी 3 इधरलियां लै गया ते 3 उधरलियां लै गया।
0: लै दस, 3 है इधरलियां लै गया, 3 उधरलियां लै गया है। ना जे भजन 6 विकटां लै गया ते जग्गा साडा इत्थां रख के खेलूगा?
2: ओ बीबी पूरी गल सुन ला, ओ क्रिकेट खिडारियां नू इदां ना कही जा। ओ तैनू पता नहीं अपनी टीम हुण बाहरले मुल्कां च वी खेडण जा रही है।
0: हां बाहरले मुल्कां च खेडण जा रही है। की आ कहिंदे जेड़ा इन्हां दा चौधरी आ सारियां दा, खरे मोंगली टोंगली की नाम है ओहदा?
2: ओ बीबी ओहदा नाम है सौरव गांगुली, ओ साडी इंडिया टीम दा कप्तान आ।
0: अच्छा ओहदे करके हुंदा सारा नुकसान आ? मेरी गल सुन काका, इन्हां दा बाहरले मुल्कां च खेडण जाना बड़ा रिस्की आ। ना हुण गोंगली को सेंचुरी बनदी आ ते ना ही बनदी 50 आ।
2: ओ मन्नी ओदे को 50 नहीं बनदी, पर कैचा दा बीबी वधिया फड़दे आ।
0: मैं ता पाजू राहे है, कैचा फड़दे आ। ओए कैचा फड़न दा इन्हां दा बखरा ही अंदाज आ, ऐदा बुक कर लैंदे ते दा लैणा हुंदा पर जा दिया।
2: ओ बीबी तू छड्ड सौरव गोंगली नू, तू ए दस के इंडिया दे बोलदरा मारे तेरा की ख्याल है?
0: मैं ता पाजू राहे, की ख्याल आ, उहनां दा वी बुरा हाल आ है। बॉलर हुण कहिंदे आ सी ता पैसे लई खेडदे सी, हुण साडियां कोठियां पै गईआं, हुण सानू बैट किथे मिलदी आ? साडे पल्ले वाइट बॉलां ते 9 बॉलां रह गईआं। आ पिछे जे वर्ल्ड कप होया।
2: ओ बीबी वर्ल्ड कप नी, वर्ल्ड कप हुंदा है।
0: पता नी केड़ा कप हुंदा, साडे घरे दा चाह पीण नू भी कप है नी। आ पिछे जे जदों वर्ल्ड कप होया वी आस्ट्रेलिया वाले जित गए आ, सचिन ते सहवाग कहिंदे हुण साडे को चौके छिके नी बचदे, साडे चौके छिके मारन वाले बैट ही बिक गए आ। मैं ता पाजू राहे।
2: ओ जगे दी बीबी गल सुन, ओ तू साडे खिडारियां नू कुछ ना कह, रब दा वास्ता तू आप ही राहे पै। आओ जी हवलदार साहब, ओ चलेगी जगे दी बीबी।
3: रेडियो दिल पंजाबी, जज्बा पंजाबी, पंजाबी, पंजाबी।

एक मशहूर कहावत है, जेड़ा घर बनाउंदे समय हर किसी की सलाह मानता है उसका घर विंगा टेढ़ा बनेगा। किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे, परमिंदर सोढ़ी, सोहने विचारां ले जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

0: अरमा रेडियो ऑस्ट्रेलिया
1: 24 घंटे 7 दिन।
2: युद्ध बारे अफ्रीका दी कहावत है कि जदो अन्ना ये कहे कि वो पत्थर सुटेगा ता समझ जाओ कि उस दे पैर हेठां पत्थर पिया है। सुने विचारा ले सुनदे

0: दारू पीने कुकड़ खाने तेरे पाजी हसी, दारू पीने कुकड़ खाने तेरे पाजी हसी, आटा नहीं पड़ोले चूहे लेंगे फिर तलाशी, आटा नहीं पड़ोले चूहे लेंगे फिर तलाशी, रे सुन डूब जाने आ, कुछ सोच कुछ देख कुछ चाक वैया बड़लाने आ, कुछ सोच कुछ देख कुछ चाक वैया बड़लाने आ,
1: दारू पीने कुकड़ खाने दादा सानू

0: खूबसूरत आवाज का सफर हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया मुड़ हाजिर होने एक छोटे से वक्त तो बाद सुनते रहो आवाज भी खूबसूरत परवाज हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सेंड अस मैसेज ऑन info@harmanradio.com
1: रोटी हजम नहीं होंगी वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल का गरेवाल चक्की आटा ताजा घट कैमिकल की वरतों वाली कणक जिड़ी के सीधी खेतों चो मिल च लिया जाती आस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो आटे तो इलावा ताजा बेसन लड्डुआं लई स्पेशल बेसन मल्टी ग्रेन आटा काबली छोले मसरां दी दाल चना दाल सोयाबीन ते बदाम भी साडे अपने प्रोडक्ट हैं वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन .com.au या फोन करो 0428895564

0: महाराज कहिंदे ने जिहड़े गुरु दे शब्द दी टेक लैके उस परमात्मा दा नाम जपदे ने जिहड़ा कदे भी नाश होण वाला नहीं, उन्हां दे मन विच्चों इह डर मुक जांदा भी वार वार जम्मांगे वार वार मरांगे आवागुण बनिया रहेगा। जम्मण ते मरण दा डर साहिब कहिंदे ने उन्हां दे मन विच्चों चला जांदा है जेड़े अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाम नूं याद करदे ने ते उस सहज विच आनंद विच लीन हो जांदे हन।
1: मेरे मन भज राम नाम अत पुरगा।
0: सतसंगत जी अत पुरगा दा अर्थ है भी अत प्यारा, बहुत मन नूं मोह लैण वाला। साहिब कहिंदे ने ऐ मेरे मन उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं याद कर, ओदा नाम जपिया कर जो बहुत

एक तरला कर रहे हैं महाराज, ऐ अकाल पुरख वाहेगुरु, असी तेरे दर दे किरंब हाँ, तेरे दर दे सेवक हाँ, निमाणे हाँ, कृपा कर साडी प्रत पालना कर, सानू अपनी शरण

महाराज कहते ने अकाल पुरख जी मैं तुहाडे दर दा सेवक हां जन तुमगा मैं तुहाडा सेवक हां मेरे मन दी एक लोच है एक भावना है जेडे तुहाडे नाम दे विच रते होए गुरमुख ने संत ने उना दी मैनू संगत प्राप्त हो जावे ताकि मैं उना दी संगत विच रह के सुख मान सकां।

0: 最终
1: युद्ध बारे अफ्रीका की एक कहावत अनुसार युद्ध ओ लोग लड़ते हैं जिन्हां दी उम्र आप लड़न जोगी नहीं हुंदी अते इस विच ओ लोग शामिल हुंदे हन जिन्हां दी उम्र हाले मरन वाली नहीं हुंदी। लेखक परमिंदर सोडी किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

उमर बारे स्पेन दी कहावत है कि दंद झूठ बोल सकदे हन, वाल धोखा दे सकदे हन, पर छुरड़ियां असल उमर दस दिंदियां हन। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

खूबसूरत आवाज का सफर हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया मुड़ हाजिर होने एक छोटे से वक्ते तो बाद सुनते रहो आवाज भी खूबसूरत परवाज हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सेंड अस मैसेज ऑन info@harmanradio.com

0: कुर्सी कुर्सी लाल हंडक पे थल्ले लाला जी आए
1: सवानी लाला जी आए
0: थल्ले लाला जी आए
1: सवानी लाला जी आए
0: मैं आख्या कोई सेवा दसो बोलण बोलो।

पंछी मुड़ मुड़ आए अपने करानों, चढ़ चढ़ कोठे तक तक रहा थक कईयां अखियां।

0: 24/7.
1: मैं जन्मदाती हाँ कविता दी, मैं कविता दे जन्म ते बहुत खुश हुई, पर आला दुआला चुप सी, क्योंकि इस चुप विच कोई दुख सी, पर मेरी चुप विच बहुत सुख सी। हुण जदों कविता ने बचपन च पैर धरिया, कविता दियां तोतलियां गल्लां, हसना चीकना रोना मुस्कुराउणा, पोला पोला तुरना खिड़ना ते खड़ना, ये मेरी आत्मा नूं अकै खुशी दा सरूर दिंदा। हुण मेरी कविता दियां सदरां जवान हो गईयां, ये सदरां हड़ दे पानी वांग बंदशां दे भड़ोले विच डक्कियां नहीं जांदियां। मेरी ये कविता भावां दे वेग विच वह के तर्क के सोहज भरपूर कई सवाल करती है, जेड़े बचपन दे हाणियां नाल लुकण मिचियां खेड़दी, हुण उन्हां नाल मुस्करा के गल करन दी मनाही क्यों। ए मासूमियत भरिया सवाल पढ़ी लिखी जन्मदाती नूं लाजवाब कर दिंदा है, पर मैं दबाओ दी सुर नूं उच्ची करदियां नैतिकता दी मोहर दा रट्टा लगाउंदी कविता नूं चुप करवा दिंदी हां। ना समझ कविता दियां भावनावां नूं मकैनिकी सांचे विच बंद कर दिंदी हां। कविता आग्याकारी धी वांग चुप करके सिसकदी सिसकदी डायरी दा सहारा लैंदी है। हुण मेरी कविता लिखदी है एक कविता, मैं अपनी कविता नूं खोखले समाज दियां बेअर्थ बंदशां दे जाल तों मुक्त करांगी, सही जिंदगी दा हक दे के भैड़े समाज विच अणख नाल जीउण दे रास्ते विखावांगी। पर मैनूं पता है इत्थे मेरी कविता आदर्शवादी हो गई है, जदों मेरी कविता अपनी कविता दी जन्मदाती होवेगी तां ओ आप भी अपनी जन्मदाती वांग भैड़े समाज दे इतिहास दे पन्नियां तों सबक लैंदी सबर दा कुट भर के इन्हां पैड़ां ते ही चल।

0: अपनी बिजनेस की तरक्की लिए तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस की एड दे लिए या किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नु स्पॉन्सर करने लिए संपर्क करो accounts@harmanradio.com या harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो।

दोस्तो प्यार दा ना है मां, विश्वास दा ना है मां, एहसास दा ना है मां। मैं एक गल कहांगा, जिस इंसान ने कदे मां नू प्यार नहीं कीता, वो दुनिया विच कदे किसे नू प्यार नहीं कर सकता। सो आओ भाई अमरजीत मां दे रुतबे नू किवें बयान करदा, आओ सुनदे हां।

0: सुनाओ अरविंद रेडियो।
1: हुन गुस्सा नहीं लगता किसी गल का, बस गल दिल ते लग जांदी है। वार वार किसी नूं अपना चेता करवाना चंगी गल नहीं हुंदी। जे अहमियत होवेगी तां लोक खुद याद करनगे। खुशियां दी उम्मीद जे दूजिया तो रखोगे तां हमेशा धोखे ही खाओगे। दिल दा दर्द समझन वाला कोई कोई हुंदा, लोकी हस के कह जांदे ने चल कोई ना। जिन्हों कदे डर ही नहीं सी मैनू खो देन दा, उन्हों की अफसोस होना मेरे ना होन दा। जदो जिंदगी विच कोई अपना चला जांदा है ना, तां इस तरह लगता है जिवें शब्दां विचों अर्थ निकल गए होण। अपनियां जड़ां इन्नियां डूंघियां करो कोई भी माड़ी संगत तुहानूं हिला ना सके। लोक जिंदगी विच आउंदे जांदे ने पर कुछ को हमेशा याद रहिंदे ने। चेहरे दीआं मुस्कानां नाल दिलां दे दर्द नहीं नापे जांदे। एक औरत विच असली सुंदरता उसदी रूह विच झलकदी है। जदों तुसीं हार के उठते हो, टुट के दोबारा जुड़ते हो, तां उदों तुसीं ज्यादा चमकते हो। मोहब्बत के खात्मे तो बाद प्यार हकीकत विच बदल जाता है। मेरे तो चंगियां तेरे शहर दियां राहां ने, जो नित चुमन तेरिया पैड़ा नूं। कदे याद ही नहीं रहिंदा कि उन्हों याद नहीं करना, ते हमेशा भुल जाना के उन्हों भुलना। भावे ही मोहब्बत का जिक्र करता हो जमाना, पर प्यार की शुरुआत सदा मां तो ही हुंदी है। दुनिया तो तक कल्ले ही जाना पैंदा है, भावे अर्थी पिछे तुरता सारा चक है। सभे सतरा आसा रख कर देंदी, यह जो सिवें च बलती अग है, यह जो सिवें च बलती अग है।

0: हर मन रेडियो
1: 24 घंटे 7 दिन
2: हर सुख मिले रब्बा जग उत्ते मावां नूं सपन ना दई कदे ठंडियां इशावां नूं हर सुख मिले रब्बा जग उत्ते मावां नूं सपन ना दई कदे ठंडियां इशावां नूं कादे ओह पुत ने नशे जिहड़े करदे तड़फाउंदे नित मां नूं नाले रहिंदे लड़दे कर कोई मेहरदाता जान सिद्धियां इरावां नूं हर सुख मिले रब्बा जग उत्ते मावां नूं सपन ना दई कदे ठंडियां इशावां नूं वलैत विच वसदा पुत कदों आऊगा सोचदी रहे आके कद गल नाल लाऊगा वलैत विच वसदा पुत कदों आऊगा सोचदी रहे आके कद गल नाल लाऊगा लाउंदी ए अंदाजे वेख बोलदियां कामां नूं हर सुख मिले रब्बा जग उत्ते मावां नूं तपण ना दई कदे ठंडियां इशावां नूं फते ने ता वेख्या मां विच रब है हुण तक मंगिया जो दित्ता मैनू सब है निर्माण भी करू पूरा मां तेरे आए चावां नूं हर सुख मिले रब्बा जग उत्ते मावां नूं तपण ना दई कदे ठंडियां इशावां नूं हर सुख मिले रब्बा जग उत्ते मावां नूं तपण ना दई कदे।

0: हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन।
1: यादां दी चंगेर चों कुछ पल कढ के अज फिर मैं अपनी सुन्नी बुक्कल भर लई। इवें लग्या जिवें बीतिया होया हर पल मैं फिर तो जी लिया है तेरे नाल। इंज सांभ सांभ रख दियां मैं तेरे नाल गुजारे ये पल, जिवें जवानी दी तहलीज ते पैर धरती कोई अलड़ अपना ताज समेट दिए। तू ते आखदा हुंदा सी मेरा चाने तू ते मैं तेरा आसमान हाँ। हुण सोचदी आं किवें कोई आसमान चन नाल अपनी सांझ तो मुनकर हो सकता है। तू ते वक्ते पानी वर्गा सैं ते मैं तेनू अपनी बुक्कल विच समेटण दी कोशिश करती रही। तन दी चादर मैली हो गई तेनू सांभद्या समेटद्या। बस हुण इको दिलासा दे लैनी आ मन नू कि उंज तेरा भी ते कोई कसूर नहीं होना। हालातां दे पोटियां च उलझ गईयां होणियां कुछ तेरियां मजबूरियां कुछ मेरियां मजबूरियां। बस इंज ही रह गईयां एक दूजे नाल जीण दियां ख्वाहिशां अधूरियां।

0: अपने बिजनेस की तरक्की लिए तुसी भी हरमन रेडियो दी सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लिए जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम स्पॉन्सर करने लिए संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो
2: सैड या रोमांटिक गीतां दे शौकीन हो

0: लकड़ देव के तड़फोना केंज लमकौना केंज एक पासा भी नहीं करते तुसी हलाल करते हो सच्चे कमाल करते हो कमाल करते हो।
1: अर्बन रेडियो दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी पंजाबी।

0: चल चलिए एक दुनिया बनाइए, विच होण खुशियां दे रंग, गल्लां करिए दिल वालियां, भाईचारे दे संग। सोच परवाज नवा आगाज ते दिल मिलिया दे साथ, सुनिए सुनाइए सांझी एक आवाज। ऑस्ट्रेलिया दा 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाला पहला पंजाबी रेडियो ट्रूली यू आर।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसीं।

रोशनी चमकी खुदाया तेनू तकिया ते साया तेरे नालों वद सुकून आहा मैं पीरां दे जाया हवा ने पुछया बदला नू ए मौसम कोई नवाया मैं पहली वारी वेख्या आसमां तो नशा है।

मुस्कुराहट बारे जापान की कहावत है कि मुस्कुराउंदे चेहरे का कोई दुश्मन नहीं हुंदा। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

0: सुनो भी दोस्तों, भावे बैठे हुए हो जा खड़े हुए हो, घर वाली नाल रसे हुए हो या फिर बापू नाल लड़े हुए हो, काम ते जा रहे हो या फिर काम तो घर वापस आ रहे हो, ओ भाई नहा रहे हो के कुछ खा रहे हो या फिर घर विच रौला रप्पा पा रहे ने न्याणे, ओ भाई दुखी ना होवो, सब गल्लां छड्डो आ सुनो हरमा रेडियो तो गाने। तुसी दोस्तों चाहे पिंडा विच बसदे हो या फिर बसदे हो विच शहरां शहरां, हरमा रेडियो सदा मंगदा तुहाडियां खैरां।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा टॉप गीत।

0: What's happening in music, culture, community events?
1: Harman Radio
0: brings you
2: the best from UK, Canada, USA, and India.
3: This is a special, so completely different.
0: What's happening in music?
3: Thank you, comedy.
4: कौन है भाई सवेरे सवेरे
5: सारे असी भी कोई कच्चियां गोलियां नहीं खेडियां
6: जरा वो कंजर बाहरों आया ओदी जंग कर लो
7: कैन आई गो नाउ
8: हरमन रेडियो
9: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा।

जद कफन दफन अरमान होना सब बंजर ते बेजान होना ना वेख हशर मैं हैरान होना मैं ते कादरी मर के जी रही हां तू जिंदे जी शमशान होना तू जिंदे जी शमशान होना तू ज

0: मन दी रीच पुगामा दे मन चाहे कसी गीत सुनावा दे हर मन रेडियो दे
1: औंता ने जुप्पी विच रहंदे जट पिछो आ पंजाब तो पक्के पौ अज दे मारे नाल हाज तो
2: औंते

0: 내 문제 카페야.
1: हर प्रोग्राम दी जानकारी रेडियो दी हर गतिविधि ते नजर ज्वाइन करो साडा फेसबुक पेज facebook.com/harmanradio australia जां जुड़ो टेलीग्राम ते telegram.me/harmaninfo वधेरे जानकारी लई विजिट करो साडी वेबसाइट harmanradio.com
2: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा टॉप गीत ओ गब्बरू जे आउंदे फिर ते आ जेड़ा दुनिया दा खाब हुंदा
3: ਮੈਨੂੰ ਯੱਟ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯੱਟ ਦੱਸਦਾ ਆ ਵੀ

0: करना के गाने ला खेलने इसे गुगे गा खेलने
1: चक्का तोड़े वर्गा निपरोड़े वर्गा मैं फोके वर्गी हो फोके कोड़े।

0: जवानी चार दिना दी ओ दिन हले पहला पहला जवानी चार दिना दी ओ दिन हले पहला पहला जवानी चार दिना दी पहला वर्गा बे मेरे बिच मोहनी सब किथे गया बे तेरा प्यार तोड़ा
1: मैं इदू शरीफ मेरे वालों रेडियो सुनने वाले लख लख मुबारक लख लख बधाई
2: असि खुदा अगे अरदास करदे आं कि हरमन रेडियो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: अपने बिजनेस की तरक्की लिए तुसी भी हरमन रेडियो दी सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लिए जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लिए संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ।

परमात्मा दे प्यार दे विच सब कुछ राज ते मुक्ति भी कुर्बान कर दिंदा है। जिवें कि भाई तिलकू ने गढ़शंकर दे विच उस नाथ नूं कहा सी जो कह रहा सी कि मेरे दर्शन करन वाला एक साल लई बैकुंठ जावेगा। भाई तिलकू ने कहा सी कि नाथ जी तुसी बंदियां दी गल करदे हो, मेरा सतगुरु जिस अमृतसर दे विच रहिंदा है उत्थों उड के लंघन वाले पंछी भी मुक्त हो जाणगे। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना, सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

विचार नाम दी, विचार शब्द दी, विचार अखुट खजाने दी, विचार महान उपदेशां दी, विचार दृढ़ता दी, विचार आत्मक अडोलता दी। प्रोग्राम गुरबाणी विचार विच रोजाना तुहाडे अपने रेडियो हरमन रेडियो ते वधेरे जानकारी लई लॉग इन करो harmanradio.com ते।

करके दुनिया का सफर असी हां थके मथे टेक टेक हुण कस के मथे इन्हां पखंडां तों हुण तू बचा मालका सानू अन्यां नूं रस्ता दिखा मालका तू वस्ता अंदर तेनू लभण भी ना जाना है ए तो बिना होर ना कोई तेरा टिकाना है कर दे मेहर तू घट ना जान सा मालका सानू अन्यां नूं रस्ता दिखा मालका दुनिया का सफर किन्ना सौखा अज हो गया अंदरों भी पाउणा तेनू औखा जिहा हो गया ए सफर दा ना लभदा ही राह मालका सानू अन्यां नूं रस्ता दिखा मालका तेरी मर्जी बिना इत्थे पत्ता भी नहीं हिलदा होवे विश्वास ते भरोसा फिर तू ए मिलदा जिवें धन्ने ने पत्थरां चो लिया सी तेनू पा मालका सानू अन्यां नूं रस्ता दिखा मालका कर दिना ए मेहर जिस जिस उत्ते तू जगा दिना ए पाग करमां दे सुत्ते तू छड दिंदा ए दुनिया दी परवाह मालका सानू अन्यां नूं रस्ता दिखा मालका इस निमाणे ते वी मेहर तू अपनी कर दे ले सका नाम तेरा बस इन्ने जोगा कर दे बख्श ले तू किते हुए गुनाह मालका

0: गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पलके उठ हर नाम ते आवे उदम करे पलके प्रभाते इशनान करे अमृत सरनावे। धन गुरु रामदास महाराज जी दे गौड़ी की वार विचों बख्शिश इन्हां पवित्र बोलां दे नाल आप सब गुरमुख रूहां दा हरमन रेडियो दे वेड़े विच स्वागत है। सिडनी आस्ट्रेलिया अनुसार अमृत वेले दे पांच वज चुके ने ते मैं दलजीत सिंह मेहता चौंक हाजर हाँ अमृत वेले दा अमृतमई प्रोग्राम गावो सच्ची बाणी लैके। मेरे वल्लों आप सब नूं जी आया स्वागतम। आओ गुरफते दी सांग करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोग्राम गावो सच्ची बाणी दी शुरुआत अमृत वेले दे नितनेम दी बाणी जपजी साहब दे पाठ दे नाल ते इस तो उपरंत आप जी करीब ढाई घंटे तक सरवण करोगे शब्द कीर्तन ते गुरमत विचारा। हुण इस प्रोग्राम विच आम शब्द कीर्तन दे नाल नाल आप जी सरवण करिया करोगे तंती साजा पक्के रागां विच शब्द कीर्तन। ता आओ सब तो पहला शामिल हुंदे आ नितनेम दे प्रवाह जपजी साहिब दी बाणी दे नाल।
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचै सोच न होवी जे सोची लहवार चुपै चुप न होवी जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सियान पालक होए ता एक न चले नाल। किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटे पाल हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न केहा जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक न हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पुआई है। हुक्मै अंदर सब को बार हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हो मैं कह न कोई।

तेहा कोई न सुझे जे तिस गुण कोई करे। सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै तर तवल आकाश सुनै दीप लोक पाताल सुनै पो न सकै काल नानक।

एक बार जो तुद पावे साई पली का तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर।

जो तुद भावै साई पलिका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह।

कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। तीर्थ तप दया दत्त दान, जे को पावे तिलका मान, सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतर गत तीर्थ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं ना ही कोई, विन गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आत बाणी परमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन सिर उत्ती मां कवन, जित हुआ आकार। वेल न पाया पंडती जे होवे लेख पुराण, वक्त न पाया का दिया जे लिखन लेख पुराण। थित वार न जोगी जाने, रुत महा न कोई, जां करता सिर ठीक हो साजे, आपे जाने सोई। केव कर आखा केव सलाही, क्यों वरनी केव जाना, नानक आखन सबको आख है, एक दू एक सियाणा। वड्डा

नानक पातशाही पातशाह अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापारिये अमूल भंडार अमूल आवे अमूल ले जाए अमूल पाए अमूला समाए अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवान अमूल बख्शीस।

अंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे, गावते उदरे सुनते उदरे बिनसे पाप कनेरे। राग बिलावल दी बाणी विच्चों पंचम पातशाह दे ए पवित्र बोल। हे मालिक अकाल पुरख, तू बेअंत है, सारी सृष्टि दा मालिक है, तेरे गुणा दी कोई सार की जाने। कोई उससे गुण गा रहा है, गावे को तान होवे किसे तान, कि उसने ताकत दिती है, गावे को दा जाने निशान। कोई इस करके गा रहा है कि मालिक ने निशानियां दित्तियां ने, जीव साडे नाल जुड़े ने, दातां दित्तियां ने। कोई अपने आचरण करके मालिक आचरण वाला है, कोई इस करके गा रहा है कि मालिक बनाउंदा है टाउंदा है, भाव के हर गुण गाया तो जा रहा है, पर उहदे गुण बेअंत ने। ते जिहड़े भी उहदे गुण गाइए, गावते उदरे सुनते उदरे, सुनते पनीत कहते पवित, जिन्हां ने उहदे गुण गाए उहदे गुण सुने, सारयां दा उधार होया। बिनसे पाप कनेरे, उहनां दे जिहड़े पाप संताप दुख दलिद्र सब दूर हो गए। तां आओ आपां वी उस मालिक दे गुण गाउण लई ए शब्द राही अपने अंतर आत्मा नूं गुरबाणी दीआं इन्हां लहरां विच जोड़दे हां।

जो जो कथे हर कीर्तन ताकि दुर्मत नास सगल मनोरथ पावे नानक पूर्ण होवे आस। राग कानड़ विच पंचम पातशाह दा ए उपदेश जो रब्बी कीर्त विच जुड़दा है, रब्बी नाम दी विचार करदा है, कीर्तन दा भाव भी रब्बी विचार विच जुड़ना हुंदा है। कहिंदे सतगुरु कि ओदी भैड़ी मत नालो नाल दूर हुंदी जांदी है। सज्जन ठग उसने कदी चेता भी नहीं किया होएगा कि मेरे जिहड़े गुनाह ने वह बख्शे जाणगे, मैं एक चंगे मार्ग ते चल सकांगा। पर सतगुरु दे एक शब्द ने उसका जीवन बदल दिता। उज्जल किहा चिलकना घोट मकालड़ी मस, ता इवें साडी दुरमत जिहड़ी है भैड़ी मत दूर हो सकती है। सतगुरु कहिंदे सगल मनोरथ पावें नानक, जिंदगी दे जो मनोरथ ने जो शुभ मनोभावना ने वो पूरियां होंदियां ने, पूर्ण होवे आस, आसा पूरियां होंदियां ने। ते जीवन दी आस तां इहो ही है कि असी उस मालिक नूं मिल सकीए। तां आओ उस मालिक नूं मिलन दा उपराला करिए, आओ शब्द सरवण करिए।

0: सतगुरु की बाणी भी संदेशा दे रही सी। जीवन की अंधेरी रात विचो जाग, गुरमत दे सूरज नू वेख बंदे, जीवन रूपी प्रभात नू सांभ। हुण तां केसां ते भी दिन की सफेदी वर्गी सफेदी आ गई है। ज्यों ज्यों बाबा अमरदास जी बाणी सुनदे हन, सफेद दाड़े तो हो के सफेद हंजू पैरां ते डिग रहे हन। मन ने हिम्मत कीती ते पुछया, बेटा बाणी किसदी है? बीबी ने कहा, सतगुरु दी। सतगुरु कौन? बीबी ने कहा, गुरु नानक। उन्हां सेवा संभाल मेरे पिता जी नूं दित्ती है। तुसी इंज पै पुछदे हो जिवें जाणदे ही ना होवो। की मेरे व्याह वेले तुसी उन्हां नूं गलवक्कड़ी पा के नहीं मिले? की तुहानूं कुड़म आख के उन्हां सत्कार नहीं दित्ता? बाबा जी बे इख्तियार होके रो पए ते कहण लगे, बच्चिए मैं कुड़म नूं जरूर मिलिया हां, मैं सतगुरु नूं नहीं मिलिया। काश कदी मैं उन्हां नूं सतगुरु समझ के मिलिया हुंदा। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना। सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हर मंगल दी नाल।
1: राग प्रभाती दी दर्ज बाणी विच चौथी पातशाही धन गुरु रामदास जी दे कुछ वचन इयो हन कि हे अकाल पुरख, मेरा मन इन्ना निर्मल हो जावे, इन्ना नीवा हो जावे कि गुरु वल्लों दृढ़ कराया नाम मैनू मिठा मिठा लगन लग पवे। मेरा जी करदा है कि मैं ऐसे गुरु दे चरण परसा, मेरा मन साधु धूर रवाल, मैं गुरु दे चरणा दी धूर बन जावा, रवाल बन जावा। हर हर नाम दृढ़ायो गुर मीठा, गुर पग चारे हम बार। सतगुरु जी इसे वचन नूं राग कल्याण विच भी दृढ़ कराउंदे ने कि मैं ही क्यों, सिर्फ मैं ही क्यों। इत्थे तां वड्डे वड्डे दैवी शक्तियां शिव जी, नारद, शेषनाग, होर भी ऋषि मुनि गुरु दे चरणा दी धूरी लोचदे ने, क्योंकि जिथे भी गुरु दे चरण पए वो मिट्टी पवित्र हो गई। शंकर नारद शेख नाग मुन धूर साधु की लोचीजे, पवन पवन पवित हुए सब जय साधु चरण तरीजे। कई मंद कर्मी जीव भी हन जिन्हां नूं गुरु दे चरण परसन दा मौका भी नहीं मिलदा, क्योंकि उन्हां अंदर दुनियावी पदार्थां दी तृष्णा दे भांबड़ बलदे रहिंदे ने। अति अखीर ओह जन्म मरण दे गेड़ विच सजा भुगतदे ने। महा अभाग अभाग है जिनके, तिन साधु धूर न पीजे, तिन्ना तिश्ना जलत जलत नहीं बूजे, दंड धर्म राय का दीजे। बसंत राग विच गुरु अर्जन देव जी दे वचन हन, तेरिया संत जना की बांछो धूर, जप नानक स्वामी सत हजूर। ता आओ जी आपा कीर्तनी तुना विच राग टोडी विचों पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का बख्शिश एक शब्द हजूरी रागी भाई बलदेव सिंह वडाला दे जथे पासों सरवण करदे हां।

गुण है जित प्रभ को पाई। सो मूरत भला संजोग है जित मिले गुसाई। जैसी दीवार पंचम पातशाह जी की पवित्र रचना ते पंद्रवीं पौड़ी की ए पंक्ति। ओ केड़ा वेला है, केड़ा संजोग है जदों मैं अकाल पुरख नूं पा लवांगी। ए जीव आत्मा कह रही है। ओ केड़ा वेला है, तन सवेला जित दर्शन करना। सो मूरत भला संजोग जित मिले कसाई। ओ कदों मुहूर्त खुलेगा मेरी, ओ कदों संजोग बनोगे जो मैं गुसाई अकाल पुरख नूं पा लवां। तां सच्चे मालक नूं पाउण लई सतगुरां दे पवित्र शब्द ही साडा सहारा ने, शब्द ही संजोग मेलदे ने, शब्द ही ओ समां लियांदे ने। तां आओ गुरबाणी दे इस अथाह प्रवाह विचों शब्द कीर्तन दे नाल जुड़ना करदे हां।

आवै को सुनै, कोई करै विचार, को उपदेशै को दृढ़ै, तिसका होए उधार। किन्ने सोहणे बचन ने राग गौड़ी विच सतगुरां दे। कोई इस परमात्मा दे नाम नूं गा रहा है ते कोई सुन रहा है। ऐसा नहीं कि सारे गाउंदे ने, कोई सुनदा है। सुनते पनीत कहते पवित्र सतगुरिया पर पूरे। सतगुरु कहिंदे जे किसी ने गा लिया, किसी ने सुन लिया ते मन करके दृढ़ कर लिया, कोई करे विचार, मन विच विचार कीती कि प्रभु दे नाम दी विचार है कि, को उपदेश है को दृढ़ है, किसी ने उस विचार नूं सतगुरु दे नाम नूं अगे संगत नाल सांझा कीता ते किसी ने उस नाम नूं दृढ़ कर लिया। ये एक जीव भी हो सकता है कि वह गाउंदा है, वह सुनदा है, वह विचार करदा है, फिर अपने मन नूं उपदेश करदा है, उस उपदेश नूं दृढ़ करदा है। ते सतगुरु कहिंदे तिसका होए उधार, उसे जीव दा जीवन उधार हो जांदा है, उहदा मनुखा जन्म लेना सफला हो जांदा है। ता आओ गुरु प्यारिओ, आपां वी अपने जन्म नूं सफला करिए, सुणीए परमात्मा दी बंदगी विच जुड़ना करिए, ते बंदगी विच जुड़न लई सरवण करदे हां ए पवित्र शब्द।

सरगर्मी करते हुए स्वेदी ताज के संग ताजा खबर, महत्वपूर्ण जानकारियाँ, मनमोहक संगीत, सेहत संबंधी सिलसिले, मुलाकातों का दौर और सरगोशियां। मालवन तो माणो मेरे नाल यानी अमरदीप कौर नाल हरमन रेडियो के प्रोग्राम लहरां दे विच सवेरे 8 बजे तो 10 बजे तक।

0: रोटी हजम नहीं होंगी वरतों गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल का गरेवाल चक्की आटा ताजा घट कैमिकल की वरतों वाली कणक जिड़ी के सीधी खेतों चो मिल च लाई जाती आस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो आटे तो इलावा ताजा बेसन लड्डू वाले स्पेशल बेसन मल्टीग्रेन आटा काबली छोले मसरों की दाल चना दाल सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्ट हैं वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन .com.au या फोन करो 0428895564।
1: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो आज ताया जी वेलकम ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू ओ मैं आ ता गया मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ इथो किथों मिलू इंडिया आले गद्दे लो ताया आपां ले आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो पंजाबी फर्नीचर जी हाँ पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू मंजे धार्मिक फोटवा चादरा साइकिल चूल्हे दातियां रंबे कई सब कुछ एथो मिलू ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन ही दूर कर दी नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा या फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन अकाल कर लियो ताया जी 0404000536 ते वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture
2: अपनी बिजनेस की तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नू स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो
3: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो 24 घंटे 24 7 दिन

0: हरमन रेडियो
1: 24 घंटे 7 दिन।
2: युद्ध बारे रोमन दी कहावत है कि युद्ध अंदर हारन वाला तबाह हो जांदा है अते जीतन वाला रोंदा है। सोने विचारां दे अंग संग

0: दोस्तों मैं दीप जगदीप ते तुसी सुन रहे हो हरमन रेडियो। हरमन रेडियो हुण मैं हरमन रेडियो ते अपनी आवाज विच पंजाबी साहित विचों प्रसिद्ध कहानियां कवितावां अते अणमुल्ले विचार लेके हाजिर हुंदा हां। मेरियां होर भी रचनावां सुनन लई अते अपने कीमती सुझा देण लई यूट्यूब उपर मेरा चैनल पंजाबी साहित्यक मंच देख सकते हो।
1: मैं क्या कट तू चढ़ल तेरा लख नौरा गल साडे जही लीडर पकी ते लभदी नी कृपा रब दी नी पुराने फेवा अल्लड़ा।

0: Carmen Radio
1: 24/7.
2: कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों लिए इस दुनिया च कुछ भी असंभव नहीं है। विचार इब्राहिम लिंकन। अजे ही होर खूबसूरत विचारां दे लिए बने रहो हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया दे नाल। दिल पंजाबी, जज्बा पंजाबी।

0: अर्मन रेडियो 24 घंटे सत्ते दिन।
1: अग जाने लोहार जाने फूकन वाले दी जाने बला।
2: इस अखाण दा भाव है कि जदों दो धिरां आपस विच झगड़ रहियां होण तां तीजी थिर उन्हां विच अजाई दखल ना देवे। झगड़न वाले आपे ही निबेड़ा कर लेणगे।

0: हरमन रेडियो कमाल बा कमाल।
1: उस आदमी नु अपाऊ आदमी कहा जाता है जेड़ा हाल पुछन ते सच्ची मुच्ची अपना हाल बयान कर लग जाए। विचार जॉन मॉरिटियर। चंगे विचारों ले जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: आवाज दी खूबसूरत प्रवास हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ते आप सब दा स्वागत है। रेडियो ते अपने गीतां दी फरमाइश ले तुसी साडे नाल ईमेल अते टेलीग्राम राही जुड़ सकते हो। टेलीग्राम मैसेज करो इस नंबर ते 9197080149। तुसी सानू ईमेल भी कर सकते हो request@harmanradio.com।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा साउथ बीट।
2: मैं तां रखिया भरोसा सुनिया तेरा, देखी किते तोड़ ना देनी
1: आवी
2: सदा के हा के किसे दा कदी दिल ना दुखायो ते ओ कम अनजाने साथों आप हो गया
1: आवी।

0: एक मोड़ पे बैठा हूँ, एक मोड़ पे बैठा हूँ जिस मोड़ से जाती है हर एक तरफ राहें। एक रोज तो यूं होगा, इस मोड़ पे आकर तुम रुक जाओगी, कह दोगी वह कौन सा रास्ता है जिस राह पे जाना है, वह कौन सा रास्ता है जिस राह पे जाना है।
1: तुहाडे मन दी रीझ पुगावांगे, मन चाहे कभी गीत सुनावांगे, हर मन रेडियो ते।

कोई मक्खी किसी शाही घोड़े नूं डंग मार सकती है अते उस नूं कमड़ी भी छेड़ सकती है, पर फिर भी वो कीड़ मकौड़ा ही हुंदी है अते कोड़ा कोड़ा ही हुंदा है। विचार सैमुअल जॉनसन। चंगे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: अपने बिजनेस की तरक्की लिए तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लिए जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लिए संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ।